0: मांग दी पुपन ती बड़ा अच्छे अच्छे अपन चल ओरा सगना हम टुकड़ी पुपन ती बनी पुशा का गलांग चांद रख रहा ना वो
1: Tekarasa Bima.
0: Dipun buntang, dipun panting, urat cecer menjeng. Dipanting dening belang Chandra Kirana, urat mudar. Yo, majis, palik, oi.